मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली बीवी बच्चे ठेला, अरे ठे ठेला ठे ठेला ठेला अरे ठेला अरे ठे ठेला। शादी एक बरस का मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली बीवी बच्चे ठेला, अरे शादी शादी का

बाटा घर में आज नहीं है आटा, खूब चलेगा बाटा। कह गए बेटा जानी वाकर, अरे वाह जाने वाकर, वाह वाह।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

ताली ताक धुम ताक ताली ताक जम ताक झाला आंब ताक झग ताक दादे गेने तू ताक नाक ताक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को दारी दाबू तारी गेने ताक तारी ता जग तारी ता जन जाने को दारी दाबू तारी गेने जम ता

दिल कैसे नजरअंदाज कर दे उस एहसास को जो तुमने हमें दिया है। बेइंतहा खुशी देकर भी तुमने हमारा चैन

पुण्य संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है।

रोकी सूखी जो मिले पेट भरने के लिए और काफी दो गज जमी जीने मरने के लिए। अबे कितना मांग रहा है मुंगीलाल, अपनी साइज के हिसाब से मांग रहा।

इफ्तिदाए इश्कवी हम सारी रात जागे, अब तो अल्लाह जाने की क्या होगा आगे। लता जी मुकेश जी के साथ और फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता। मोई लगे तो

0: तेरे।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें कर

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, और तेरे बिना मैं तो कुछ भी नहीं। सोनू निगम एंड हाँ सोनू निगम के साथ आप सुने कविता कृष्णमूर्ति से फिल्म वास्तव का गीत, और यह है उजाला रेडियो। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप देखें उजाला पंत एंड

लता जी के साथ अमित कुमार की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म रोमांस से निकाला हवा। और इसी यादें पर एक और गीत आप सुनेंगे, उदित नारायण नंद अलका जी से।

0: Ja, daar ben ik weer. En Anand is er ook. Goedemiddag, Anand. Goedemiddag. Hallo. Anand, op een microfoon in je hand te demonstreren krijgen. Ja, kijk, zie je. Hè? Ik ga hem zo die kaap heel druk aan. Want ja, hallo, Anand. Hallo. Hallo, goedemiddag.
1: Ai, ai, ai. अरे यार थोड़ा सांस लेवें दे आगे लो
0: हम कोई के सांस ना लेवें दे ला है
1: एक तो क्वारी इतना देरी में खुल ले हाय बॉय मैं बंग फॉर होंडा मैं बंग फॉर होंडा
0: एक बैन
1: कहे इतना कुत्ता यहाँ चलेगा लोइट
0: सुना एक कुत्ता के देश आएगा तो
1: तो शमा ये मार वेल सा कुत्ता के देश मैं मुनी सा कुत्तन के देश मुझे नहीं सका
0: है नहीं तो नहीं नहीं नहीं नहीं उचित वाला बोल सकी हम लोग कुत्तन के देश
1: तू बदल करेगा इस देश में ढेर कुत्ता

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूड यू ईमेल नर info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मौत की खबर सुनने के लिए आप गौर करें। एंस्कदे से रिश्तेदार दाहू बड़ी गमी के साथ ऐलान करते हैं कि गुजरे हुए शनिचर को 74 साल की उम्र में फिरन ज़ैफ़त ख़ियार औत बेगम साहिबा एतमी दाहू का खाविंद लड़कन फाजिया फाजिल और फाइज के वालिद, एक बहू का ससुर और सभी लड़कन के नाना और दादा एंस्कदे लात्रोब्रिंक का रहने वाला साहब मोहम्मद अजीज दाहू के वफात एंस्कदे में हो गई है। रबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। एंस्कदे से रिश्तेदार दाहू बड़ी गमी के साथ ऐलान करते हैं, गुजरे शनिचर को 74 साल की उम्र में फिरन ज़ैफ़न तख यार औत बेगम साहिबा एतमी दाहू का खाविंद लड़कन फाजिया फाजिल और फाइज के वालिद, एक बहू का ससुर सभी लड़कन के नाना और दादा एंस्कदे लात्रोब्रिंक का रहने वाला साहब मोहम्मद अजीज दाहू के वफात एंस्कदे में हो गई है। रबी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। दीदार कर आप कर सकेंगे कल मंगलवार को स्टिफ्टिंग फैजन ए मदीना में, पता है फ्लीरस्ट्रैट 91 फ्लीरस्ट्रैट 91 एंस्कदे में, कल दिन में 1:30 12:30 जनाजा नमाज पढ़े जाएंगे और दिन में 2:30 मोरखन 12:30 इन्हें खरूनदाल कब्रस्थान पर दफनाए जाएंगे। पता है विलम द क्लैरिक्स्ट्रैट 93 विलम द क्लैरिक्स्ट्रैट 93 अलमलो में। और मालूमात के लिए तार का नंबर है 06 47 40 44 20 06 47 40 44 20। सुनने वालों से गुजारिश है खबर को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो इन रिश्तेदारों की गमी में शरीक है।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं निशा बोल रही हूँ। आज मैं अपने संगीत के खजानों से धागे में एक के बाद एक गीत और गजलें पिरो कर लाई हूँ। इसमें मुझे यकीन है कि आपकी पसंद भी होगी। शुरू करते हैं ये दुआ से। खुदा से दुआ है कि आप जैसे अनमोल लोगों को हमेशा दुख दर्द बीमारी तकलीफ आजमाइशों से महफूज रखे। हम सबको अपनी रहमत वाली और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। दरूद तुम पर सलाम तुम पर।

नाते नबी आपने अभी तलत महमूद की आवाज में सुना। कलाम था शायर नयरंग संभाली का। राम का गुणगान करिए सुनाएंगे महान शास्त्रीय संगीत का गायक पंडित भीमसेन जोशी और स्वर की देवी लता मंगेशकर की आवाजों में।

रूहानियत अंदाज में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। उजाला रेडियो का पसंदीदा प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। हाँ, उजाला रेडियो के जरिए आपको तरह तरह का प्रोग्राम कई शैलियों में सुनने को मिलते हैं। अब हम आपके खिदमत में गजलें पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप इससे लुत्फ उठाएंगे। हर रात मुझको एक नाम याद आता है, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम याद आता है। जब सोचता हूँ कि कर लूँ दूसरी मोहब्बत, तो पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया।

ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। द गज़ल क्वीन बेगम अख्तर की आवाज़ में पेश थी ये गज़ल। कलाम था शायर शकील बदायूनी का। हमेशा हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहने हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, तो हमेशा देर कर देता हूँ मैं। फिर कुछ इस दिल की बेकरारी है।

शेराना अंदाज में पेश की ये गज़ल श्री जगजीत सिंह की आवाज़ और ख़ुद उन्हीं की मौसिकी थी। कलाम था महान शायर मिर्ज़ा गालिब का। मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस दिल खामोश हो गया है, बहुत सन्नाटा सा फैल गया है अंदर तक। ना गुस्सा करने का दिल है, ना शिकवे की तमन्ना, ना ही किसी चीज की जिद और ना ही कोई शिकायत।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गजल। आवाज थी रीना राजन की, तर्ज को लिखे थे शायर अली शहजाद, मौसिकी थी रहमान राजन की। सुनहरे दौर के कुछ गाने चुने हैं, उम्मीद है इन गानों को पसंद करेंगे।

दो गाना पेश था, गाने वाले थे ललिता देउलकर और मोहम्मद रफी साहब, संगीत से सवारे थे से रामचंद्र। मीठी मीठी हल्के धुनों में लीजिए ये दो गाना पेश है आशा भोसले और हेमंत कुमार की आवाज़ों में।

और का सदाबहार गीत पेश था हेमंत कुमार का सजाया संगीत और दर्श को लिखे थे पंडित रवि शंकर ने। सुनो तो जरा तू मुझे इश्क के असूल ना समझा, क्योंकि क्योंकि मुमकिन है कि हमसा दीवाना तुम्हें फिर कहीं ना मिले।

0: जी हाँ, हो गई दिल खुश, है ना। और ये खुश मिजाजी गीत थी आशा भोसले की मीठी सुर में। हम आपको मायूस नहीं करेंगे, इसी अंदाज में सुनवाती हूँ अगला गीत। हाँ, जानी पहचानी गीत है, आप भी साथ गुनगुनाए और मजे लीजिए।
1: गोरे गोरे ओ बाके छोरे।

खो गई ना दिल बाग बाग, आज भी इन गानों में वही ताजगी है। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, अमीर भाई और साथियों की। शायर राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्ज था, संगीत से सवारे थे सी रामचंद्र। अब आइए सुने किशोर कुमार से अगला गीत।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये गीत उपेन अय्यर का संगीत रचना गीत रचना अजीज कश्मीरी का था और जब गाना लवली हो ना तो समा भी लवली हो जाता है।

मोहब्बत भरे अंदाज में पेश था ये जुगल गीत मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मुकेश की मधुर आवाज़ में आइए सुने अगला गीत।

फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली में से पेश था ये गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था बोल मजरू सुल्तानपुरी का। बरसों के बाद देखा है एक शख्स दिलरुबा सा, कुछ ऐसी प्यारी शक्लें मेरे दिलरुबा की है।

फिल्मी दुनिया में आप सभी सुनने वालों को एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस हिस्से का प्रोग्राम में हमने कई प्रोग्रामों में महान मॉरिशस धर्मेंद्र के बारे में बयान किया है। पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी कि धर्म जी हेमा मालिनी से शादी किया और इन दोनों की दो बेटियां हैं, ऐशा और अहाना। ये भी बतलाई थी कि धर्म को एतराज था कि ऐशा और अहाना क्लासिकल डांस सीखे और फिल्मों में अदाकारी करे, पर हेमा की जिद थी, वो अपनी बेटियों को नृत्य सिखाई थी। बेटियों के नृत्य देखकर धर्मेंद्र ने कहा कि डांस तो ठीक है, पर फिल्मों में एक्ट्रेस बनने का ख्याल के बारे में सोचना ना, हम इजाजत कभी नहीं देंगे। आगे क्या होता है, पहले एक गीत सुनवाते हैं। ये गीत फिल्म आज़ाद में से लिया है, जिसमें धर्म और हेमा मालिनी ने काम किए हैं।

ये दो गाना धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ऐशा और अहाना फिल्मों में काम करे, पर ऐशा अपनी बाबा का कहा एक नहीं माना। वो अपनी अम्मी से डांस सीखी थी और अम्मी की बदौलत ऐशा 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे में काम किया था। यह सुनकर कि बेटी ऐशा डांस के अलावा अब फिल्मों में काम करती है तो वो बहुत नाराज हुआ था। धर्मेंद्र अपने बेटी को 6 महीने नज़रअंदाज किया। 6 महीनों तक ऐशा से बात नहीं की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी बदल गया। यहाँ तक कि धर्म बेटी अहाना को भी इजाज़त दी थी फिल्मों में काम करने को। बेशक ऐशा हूबहू हेमा की तरह थी जो फिल्मों में अपने मुकाम बनाना चाहती थी। प्रधान जी जो शुरू से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का साथ दिया था, उसने कहा कि आज का धर्मेंद्र एक बहुत मुख्तलिफ धर्मेंद्र है। वो कितना बदल गया था और यकीनन इसका कुछ हिस्सा हेमा मालिनी को भी जाता है। यहाँ तक कि हेमा ने अपनी बेटी ऐशा को प्रमोट करने के लिए फिल्म टेल मी ओ खुदा प्रोड्यूस और हिदायत किया। इस फिल्म में काम किए थे ऐशा, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और सलमान खान। और इस फिल्म टेल मी ओ खुदा में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने ऐशा का बाप और माँ का किरदार निभाए थे। दोनों खानदान आपस में कैसे रहते थे, दोनों परिवार के दरमियान बिना बोलचाल के एक रिश्ता था। यहाँ तक कि प्रकाश देओल लड़का तलाश कर रही थी ऐशा के लिए और अजीत सिंह का बेटा अभय देओल हमेशा ऐशा और अहाना देओल के लिए एक अच्छे दोस्त या कहिए भाई का फर्ज निभाया। 12 साल तक दोनों परिवारों में बोलचाल नहीं थे, पर जब हेमा का कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था तो मुंबई हॉस्पिटल में सबसे पहले बेटा सनी देओल पहुंचे थे। पहले आपको एक गीत सुनवाते हैं, फिर कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

इस गीत से पहले आपने सुना कि हेमा जी का कार एक्सीडेंट के बाद धर्मेंद्र जी का बेटा सनी देओल हेमा का ख्याल रखा था। धर्मेंद्र की फिल्मी सफर के बारे में बयां किया, उसकी दोनों खानदानों के बारे में इत्तला किया, पर आप जानते हैं धर्मेंद्र को एक्टिंग के अलावा और कई खूबियां था। उसका अपना फार्मी था जहां कई जानवरों को पालते थे और बेटी अहाना अपने शौहर और बेटे के साथ ज्यादा वक्त वहीं अपने बाबा धर्मेंद्र की फार्म हाउस में गुजारते थे। अहाना ने कहा कि वहां कितना सुकून था और खुश रहती थी अपने छोटी सी परिवार के साथ, और ये भी कहा कि एक वक्त था कि उनके लिए स्क्रिप्ट भी तैयार हो चुकी थी, बाबा भी स्क्रिप्ट पर ध्यान दिया था, पर अचानक बाबा की घुटनों में दर्द होने लगा और इलाज करने के लिए उसे अमेरिका जाना पड़ा। अब हम आपको फिल्म जलाकर राख कर दूंगा में से एक गीत सुनवाते हैं। इसमें काम किए थे धर्मेंद्र, गोविंदा, अनीता राज और फरहनाज़।

इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र की बेटी आहाना अपने बड़ी बहन ऐशा की तरह अदाकारा बनना चाहती थी, पर बाबा के घुटनों की इलाज के लिए उसे अमेरिका जाना पड़ा था, इसलिए फिल्मी दुनिया से अब दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, मैंने अपनी अम्मी हेमा मालिनी और ऐशा के साथ अक्सर स्टेज परफॉर्मेंस

मंच करती थी। धर्म जी अपने घुटनों के इलाज करवाने के लिए कई हफ्ते हॉस्पिटल में थे। अमेरिका में अकेले तन्हा दर्द से बेहाल और सोच रहा था कि कोई आपका दर्द बांट नहीं सकता और मुझे तन्हाई से डर लगता था, तो मैंने तन्हाई दूर करने के लिए लिखना शुरू किया। पर यह हुआ कि उर्दू और हिंदी शायरी के जरिए अपने दिल की गहरे एहसासात जज्बात को बयान करने का मौका मिला। ये इंटरव्यू हुआ था उनके घर पर अमेरिका से वापस लौटने के बाद, और कहा धर्मेंद्र शुनाले से कि मैं उर्दू शायरी लिखता हूँ और मुमकिन है कि फिर कभी हम ये पब्लिश करेंगे। मुझे अब एहसास हुआ है कि मेरे अंदर ये जौहर भी है, उसे चमकाना है। तो अब हम आपको धर्म जी का खुद की लिखी हुई एक कविता सुनवाती हूँ, आप गौर फरमाइए। मन्नतों की मुराद, दुआओं की देन, मालिक की मेहर का एक वरदान हूँ मैं। महान माँ की ममता, अजीम बाप की शफकत का अजीम और शान एक एहसान हूँ मैं। इंसानियत का पुजारी, छोटों को लाड प्यार, बड़ों का आदर सम्मान हूँ मैं। दुनिया सारी बन जाए एक कुआं, एकता की हसरतों का अरमान हूँ मैं। मोहब्बत है खुदा, खुदा की मोहब्बत का फरमान हूँ मैं। नेकी मेरी शक्ति है, बड़ी मुझसे डरती है, ऐसा उत्तम आत्म सम्मान हूँ मैं। प्यार मोहब्बत आपकी सींचती है जज्बात को मेरे, इसीलिए आज भी जवान हूँ मैं। खता अगर हो जाए बख्श देना यारो, गलतियाँ का पुतला आखिर एक इंसान हूँ मैं। इसी तरह हमने आपको धर्मेंद्र जी की लिखी हुई कविताओं में से एक कविता सुनाई। अब हम फिल्म प्यार ही प्यार में से एक नगमा सुनवाते हैं। इसमें धर्मेंद्र और वैजयंती माला ने काम किए थे।

फिल्म प्यार ही प्यार में से ये गीत लिया है। इस फिल्म में काम किए थे धर्मेंद्र, वैजयंती माला और शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो धर्म साहब की कई फिल्में देखा था और उनके नज़र में वो सबसे हैंडसम खूबसूरत अदाकार था और मेरी ख्वाहिश था कि एक दिन मैं धर्मेंद्र जैसे अदाकार बनूंगा। बाद में जब मैं फिल्मों का रुख लिया तो छोटा मोटा किरदार निभा रहे थे और कहा, सिन्हा साहब, जब मुझे धर्मेंद्र के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला तो ये मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरा किरदार सिर्फ 2-4 मिनट का था पर मेरे लिए अहम था। हम एक साथ काम कर रहे थे और जब मौका मिलता तो हम धर्म जी से सवाल पर सवाल करता था, जैसे कि आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं, तो धर्म ने जवाब देते, मैं बालों में तेल नहीं लगाता हूँ। सिन्हा साहब ने कहा, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना मकबूल हो जाऊँगा और मुझे इतनी सारी फिल्मों में धर्मेंद्र साहब के साथ काम करने का मौका मिलेगा। धर्म साहब ने कहा, फिल्मी दुनिया में सभी के साथ हमने काम किया पर मैं डैनी डेज़ोंगपा को अपने दो सबसे करीबी दोस्तों में से एक मानते हैं। और डैनी ने कहा, धर्म बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह है जो मुझसे बहुत दोस्ताना अंदाज में पेश आते हैं। जितेंद्र भी धर्मेंद्र को पसंद करते थे। उसने कहा, धर्म को मैंने पहली बार उस वक्त देखा था जब मैं कॉलेज में था और मुंबई की रीगल सिनेमा में फिल्म देखने गया था। मैं धर्म जी के साथ कई फिल्मों में काम किया और फिल्मों से बाहर भी हम दोनों मिलते थे और वो जानते थे कि हेमा मालिनी के माँ बाप मुझे पसंद किया था उनके बेटी से शादी करने को। हेमा जी के साथ भी मैंने कई फिल्मों में काम किया है। बातें आगे बढ़ाने से पहले फिल्म झील के उस पार में से सुनवाते हैं ये गीत।

फिल्म झील के उस पार का गीत पेश था। इस फिल्म में अदाकारी किए थे धर्मेंद्र, मुमताज, जोगीता बाली, रंजीत और प्रेम चोपड़ा। धर्मेंद्र की सेहत उनकी जिंदगी के आखिरी सालों के दौरान तबीयत नासाज रहता था और ये उनकी परेशानियों की खास वजह थे। धर्म साहेब हाथ खरोनी से हार्ट क्लख्तन और आखिरी दिनों में कई बार हॉस्पिटल में थे। हेमा मालिनी और बेटियों को अपने शौहर और वालिद से मिलने के इजाज़त दी गई थी। और फिर फिल्मी दुनिया का एक और महान मारूफ शख्स धर्मेंद्र साहेब 89 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा लिया। धर्मेंद्र साहेब का ये आखिरी प्रोग्राम है, पर इस हिस्से की फिल्मी दुनिया ख़त्म करने से पहले उन्हीं की लिखी हुई शेर सुनवाती हूँ। ज़ाती जिंदगी रहे पोशीदा, पोशीदा मतलब खैम। ज़ाती जिंदगी रहे पोशीदा, इसी में उसकी खुशनुमाई है। हो जाती है नीलाम चौराहे पे सरेआम जब जब आई है। हम इंडस्ट्री में है पर इंडस्ट्री के नहीं है। शोहरत खलल हो चुकी है मेरे लिए, दिलों में मोहब्बत मांगी थी, शोहरत तो मांगी नहीं थी। शोहरत मिली और अशोहरत खलल हो गई। मेरे तासीरी मोहब्बत में इतना दम है, मैंने फिर इबादत की। मुझे शोहरत नहीं मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत की पहली सीढ़ी। तू नेक बंदा है मेरा, जहाँ तक जा सकता है नेकी से मत भटकना। नेकी तेरा सबसे बड़ा अवसार है, अवसार मतीकन वापन है। ये थी धर्मेंद्र साहेब की लिखी हुई कविताओं में से एक कविता जो मैंने आपको सुनवाई। तो उन्हीं की फिल्म प्यार ही प्यार में से सुनवाते हैं ये गीत, आइए सुने।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान फनकार धर्मेंद्र साहब के बारे में बयां किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं लता मंगेशकर से ये गीत।

फिल्म होली आयरे में से ये गीत पेश था। संगीत देने वाले थे कल्याण जी आनंद जी। अगर किताबें ही सिखा देती हर सबक तो क्या माजरा था। वक्त के सिखाए गए हैं हम, वक्त के सिखाए गए हैं हम, अब क्या बिखरेंगे और क्या सवारेंगे। जिंदगी के मोड़ पर हम तुम मिले और खो गए।

एवर ग्रीन सॉन्ग पेश था आवाज थी आशा भोसले की। संगीत से सवारे थे ओपी नैयर, तर्स को लिखने वाले थे शायर साहिर लुझानवी। अगला दो गाना पेश है हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाजों में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सब रंग आप सुन रहे हैं, जो आमस्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम में आपको कुछ सुनी कुछ अनसुनी गाने सुनवाती हूँ। हाँ, गाने जिसे सुनकर मन शायद बैठ जाए या बाग बाग हो जाए, और ऐसे प्रोग्राम आपको युवा रेडियो के जरिए सुनने के मिलते हैं। तो आइए सुने मोहम्मद रफ़ी साहिब और आशा भोसले की आवाज़ों में अगला दो गाना।

संगीत का नौशाद अली का सजाया संगीत और शायर एस हा बिहारी का लिखा तर्ज में पेश था ये दो गाना। अगला जुगल गीत पेश है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अभी आपने मुकेश और लता मंगेशकर से ये दो गाना सुने। इसी अंदाज में आइए सुने अब दलत महमूद और लता मंगेशकर से ये गीत।

अभी आपने संगीतकार शंकर जयकिशन का सजाए संगीत में ये दो गाना सुना। तर्ज को लिखने वाले थे शायर शैलेंद्र। क्यों दिल में बस के दिल को दुखाते हो तुम, किस कदर कदम कदम पे आजमाते हो तुम, हर पल रहते हो आंखों में तुम एक सपने की तरह, फिर क्यों इन्हीं आंखों को रुलाते हो तुम।

बार गीत पेश था। सचिन देव बर्मन संगीत से सवारे थे, तर्क को लिखने वाले थे साहिल लुधियानवी। अब आइए सुने किशोर कुमार से ये गीत।

नगमा पेश था गाने वाले थे किशोर कुमार। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत रचना था, तर्श को लिखने वाले थे शायर आनंद बख्शी। किस तरह होता है मुमकिन ये गवारा करना, दिल में बसे हुए लोगों से किनारा करना। लोग कहते हैं कि हम तुमसे किनारा कर ले।

संगीतकार रोशन का सजाया संगीत था। गीतकार था शायर साहिर लुधियानवी। मोहब्बत मोहब्बत रूह में उतरा हुआ मौसम है। ताल्लुक खत्म होने से मोहब्बत कम नहीं होती। बहुत कुछ तुझसे बढ़कर भी मैसर है, न जाने फिर भी क्यों तेरी जरूरत है।

फिल्म सारंगा में से ये दर्द भरा नगमा पेश था। सरदार मल्लिक की मौसिकी थी, कलाम था शायर भारत व्यास का। अब आइए सुने मोहम्मद रफ़ी साहब से ये नगमा।

फिल्म दो दिल में से ये नगमा पेश था। संगीत से सवारे थे हेमंत कुमार और तर्ज को लिखने वाले थे कैफी अजमी। इसी अंदाज में सुनवाते हैं अगला नगमा।

संगीतकार शंकर जयकिशन का सजाया संगीत था बोल शायर हसरत जयपुरी का। तेरे यादों के रास्ते की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा मैं, दिल दिल तड़पता है तेरी खत पढ़कर, अब तेरी खत नहीं पढ़ूंगा मैं। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ।

कभी तो नजर मिलाओ नगमा में चार चांद लगाने वाली आवाज थी आशा भोसले जी की, मौसिकी अतनान सामी की। अगला गीत डर भरा गीत है, आवाज है लता मंगेशकर की।

संगीतकार शंकर जयकिशन का सजाया संगीत था बोल शायर शैलेंद्र का। अब आइए सुने किशोर कुमार से ये गीत, और ये प्रोग्राम का आखिरी गीत है।

Ujalas. कॉफी एंड चाय मिडर शो यहीं से आरंभ किया जा रहा है सुनने वालों मैं हूं लॉयड महावीर अनहेल गुडमिडग ऑफ दिस मंडे 29

यू आर उजाला रेडियो, यहीं सुनो लो। चलिए प्रोग्राम में हम आपको एक नगमा सुनाते हैं एंड सो मतें दान प्रातः जुलाई बाय ओवर न्यूज़ फ्रॉम गत वीकेंड इतना गर्म मौसम था एंड नतुलक हादें वाय 3 dagen लंग ongeveer, ja, 3 dagen of 4 dagen lang geen koffie chai middagshow, want bahut garam raha, bahut garam raha. Dus ja, toen dachten we van, weet je wat, we houden het wel gezellig op de radio, lekker muziek, lekker naar muziek luisteren. Hè? En kambate, kam samatjaar, want daar heb je echt geen zin in.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।